0: मुजुब जाना दी सुजी ले जेमे
1: सिम सांदो ल बाबरा गे माजे न गानी दा नान दे बाबरा जुजे दे आरा तो जुमे
0: ए सशी दी गे ने उला वा जेसा मुए ले सा
1: आ बाबा बाबरा ने
0: वो ता जा बो जे दा ने पेदो मा शी ले शी दा बे लो यु
1: ना मा छगा जुई
0: वे छु छ दा मा दे छु दा
1: बाबरा गे जु आमा
0: 爸爸是新婚的吴老二这边。丁贵陪酒的切图是吧？俺们两个爸爸是新苏联四十六年用马这边啊。你爹能看过是的。当然有想的哥哥是。算不了。让俺妈冷的陪到幺妈里。爸爸让东西。大东东。自己自己自己。客气啊。呀，全部用爸爸去搞笑。呀，晓得。哎呀，俺去搞笑的去。俺去有的。自己自己去搞笑的去。
2: 你，爹娘生气，喂，克拉三姐准备呗。嗯，上去给不进去，吃不起，上去叫你吃吃嘛是，上去叫你吃吃嘛是，上不给不吃喝多啊。嗯，东叫不听这点子。找地干啊，顶上没有几个人，三三不穷。
0: 莫让给某些队员俺装死的样，我回去过的，一年嘛他来莫让给俺送军去，不去了嘛？能不用队员了，俺开枪不是啥水去？
2: 这，就叫个阿家队员，是啥差不远的？阿家给就叫了送军去给了，就叫给出现去的，爹也是三三。这地都差了，招弟心上为鬼没变啊？上了阿家能行，就能阿爹不得个？俺阿爹没多，
0: 钱挣。
2: 招弟是让俺妈让咱扫地去，老看俺有皮，没让给俺就拿了干了些啥给我的。看他年轻呢，你这些伢的三皮大片子兄弟几个点过来嘛多，东西么大，趁少不吃光阿些。一年年那为哪了，我你怕了，就没别说啥许多。
1: 阿西。
2: 啊，不要什么的，等到星期去预备。喂，喂，我身体好着呀。
1: 你让点小木有在这边？让我上木对呀，让你上得嘛这边？日，谈的日，今晚日，哪么呀日？让你上得一呢，我点小木有啊里呢？你点小木有没有的？开枪嘛的。
2: 张队长，你没有呢？看他让党部钱送的，地头那忙个什么都歇歇吃不着，包不给我也不吃的。开什么玩的算啥？让女婿，你什么拿了？让个点票的，速去个点票来开车去。
1: 啊，来，俺开车不得这样的呗啊！这是，你拿下。
2: 让个看那的拿下是不是？你让你接等伊。
1: 你这很正常啊。
2: 我做样的。嗯。呀。你让你接等你。